ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। Nice to be again in the Vancouver, and I enjoy to go to the Stanley Park to take the lot of oxygen. Vancouver,

श्रीराता गौरीपुत्रमः गणपतिदेव की जय बुरिये शंकर भोलेनाथ की जय मलयवतार आत्मा पुरुष लकपुरी जी सितपीत परंपरा की जय देवति देव देवेश्वर स्वयंभुदेव पुरुष महादेव की जय आरादिदेव बुरिये श्री दीपनर भगवान महाप्रभु जी की जय श्री श्री हिंदू धर्म सम्राट परमं श्री स्वामी माधवानंद पूज्य भगवान की जय श्री श्री सर्वभूमिश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमं श्री स्वामी महेश्वरानंद पूज्य भगवान की जय हो।

ओम बोलिए श्री दीप नरे भगवान की जय। विश्व गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी योगानंद जी की जय हो।

ईश्वर महादेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, होली गुरु जी भगवान की जय, स्वामी महेश्वरानंद जी सर्वभूम जगत गुरु योगी राज की जय, साब ऋषि मुनि महात्माओं की जय।

ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। नाइस टू बी अगेन इन द वैंकूवर and I enjoy to go to the Stanley Park to take the lot of oxygen. Vancouver as well as Vienna have the same category of the good environment, good fresh air. And both Vancouver and Vienna have the same horoscope according to the astrology. Well, we are

0: हरि ओम,
1: हरि ओम,
0: गुड डे,
1: हेस्की डेन,
0: विश यू वेरी नाइस डे,
1: प्रेयु वाम क्रासनी डेन।
0: यस्टरडे वी हैड पर्टिकुलर पोस्चर्स,
1: včera jsme měli

सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान है, दीप नारायण भगवान है, सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।

शक्तिशाली चतुर्व्यूह सतगुरु भगवान की जय। पांचीपति विश्वनाथ नित्य प्रति सर्व प्रकार से बड़े उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरुदेव के चरणार विंद में कोटि सत नमस्कार करके ये जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति मोति सह सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा। सर्वर्दे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे दीन कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे। ओम अग्नेर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नेर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नेर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्यमोहिनी चामुण्डा महादेवी सुरासुरवन्दनी ह्रीं ऐं स्वाहा। ओम क्रीं कानेन्दी भेदनाय ओमग्नैर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नैर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ीशं करानं महाकालकालं कृपानं गुणाङ्गार संस्था।

0: सतगुरु भगवान की
1: जय हो।
2: अच्छा बोल दो,
3: हम बोल दें मामा, एक आध बोल दें
1: फिर जाए बताओ।
0: बोल ले

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधव माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरुदेव की जय।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु श्री माधव कृष्ण भगवान की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय हो।

0: ओम शलपुर्ज महादेव की जय,
1: जय।
0: देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय, सुदीप नारायण भगवान की जय, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय,
1: जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ, सल्यूटेशंस टू शैल पुरुष सिद्धपीठ परंपरा। माय डन प्रणाम स्व बिलव्ड गुरुदेव इस ऑलनेस विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद पुरुष जी। ओम नमो नारायण टू द ऑल द सन्यासी।